0: हाँ अच्छे देखो।
1: देखो चलो चलो इधर देखो डैडी देखो डैडी।
0: हेलो, इसी अजबार है शिकी।